कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: वो तो
2: क्यूट है ना।
1: अरे पहलवान है,
2: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
2: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
2: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-226-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। रविवार का दिन है, इतवार का दिन, सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए।

सेवा में। चले एक भजन पेश किया जा रहा है फिल्म बजरंग बली का, और आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन पेश की गई फिल्म बजरंग बली का ये सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। गुरमीत और मीना की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है। गुरमीत और मीना की आवाज में ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हरिओम शरण और नंदनी शरण जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। मन भजन

शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक भजन की ओर हम आपको ले चलेंगे चित्रा सिंह की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, और इस भजन के बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी।

पास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खासतौर पर आरती भजन की ओर। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

इस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए रेडियो SBS के जरिए आसरा उम्मीद है। आज रविवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है। कल है सोमवार और कल सुबह 7 बजे से फिर भजन यात्रा प्रोग्राम

जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, मैं हूँ आपका खिदमत गुजार रबीन। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। पुरानी नगमे पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। और चले यहाँ से प्रोग्राम में पुरानी नगमे की ओर हम आपको ले चलते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम। बाहर का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, गर्मी सा मौसम, धूप ही धूप का मौसम, तो प्यार भरी गाने आज की सुबह की प्रोग्राम में।

0: प्रोग्राम भी पेश की गई है, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार

62 66 11. Our Radio SBS website radiosbs.nl. किशोर कुमार के बाद मुकेश एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है.

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम गंगा की लहरें।

शोर और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए अपनी बार मोहम्मद रफी की ओर, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की सरिये। उसी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। मोहम्मद रफी के बाद हम आपको ले चलेंगे दिलीप कुमार और विजयंती माला का एक खास फिल्म की ओर। गंगा जमुना फिल्म का नाम है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में पुरानी फिल्म गंगा जमुना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई है। 1961 का फिल्म है, 1963 का फिल्म गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला ने काम किया है। तलत महमूद जी की आवाज में अगली बार ये गाना पेश किया जा रहा है से रामचंद्र का संगीत पर आप सुनते

गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। श्री रामचंद्र का है संगीत पर ये काफी पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। चले फिल्म घराना की ओर, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। जब से तुम्हें देखा है आंखों में सिर्फ तुम ही तुम हो, फिल्म

घराना, पुरानी फिल्म घराना का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। जब से तुम्हें देखा है आंखों में सिर्फ तुम ही तुम हो। रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर, अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम घर। किशोर एंड लता।

आयशा जी की आवाज में ये खास गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। किशोर कुमार की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

अरे भले ढींगा मुश्ती हुई, खूब झगड़े हुए, आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए, धूम धड़का चील कपट्टा बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े, ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े, घूसे डंडा दे, घूसे डंडा दे, घूसे डंडा दे, बाप दौलत लूटा हाथ

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में एस की सर ये आपने सुना किशोर कुमार के बाद हेमंत कुमार प्रोग्राम में।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार लता जी की आवाज में एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

की ओर हम देख रहे हैं, धूप ही धूप का मौसम है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रविवार का दिन है, 9 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611। मोहम्मद रफी एंड लता फ्रॉम द मूवी भीगी पलके। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा,

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज पे ये गाना पेश की गई भीगी पलके फिल्म का गीत अभी आपने सुना जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा गाना जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फ्रॉम द मूवी भीगी पलके। 10:14 एडिट हो चुका है फिर 3 मिनट ओवर 3 स्टूडियो एडिट हो चुका है शेर ट्रैक से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो आज से

राखी गुलजार फिल्म में काम किया है। काला पत्थर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में हमारे सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और ऐप के जरिए तार किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। प्रोग्राम सुनते ही रहना, हम बने तुम बने, बने हैं बस एक दूजे के लिए। फिल्म का नाम एक दूजे के लिए, 1980 का फिल्म, SP बालासुब्रमण्यम एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में। हम बने तुम बने, बने हैं एक दूजे के लिए।

एस बी बाला सुब्रमण्यम और लता जी की आवाज में गाना पेश की गए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सुन बलो अभी 11 बजे से आप दरियाब कर सकते हैं टोको दवा सुपर मार्केट टोको दवा के पास में 11 बजे से लेकर के और 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा, तो जरूर आप तसरी फरमाइए। प्रिंस बर्नार्ड प्लेन नंबर 54 यूट्रेक्ट सुइलन में जो है सुपर मार्केट टोको दवा अभी 11 बजे से लेकर के और शाम में 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा, तो जो भी सामान आप खरीदना चाहेंगे तो जाकर आप खरीद सकते हैं। किशोर कुमार और लता जी की आवाज में गाना पेश होगा आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में।

जी की आवाज में ये गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई है, आजाद फिल्म का नाम। उसी सुनने वालों है जो इस वक्त हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, खासतौर पर जर्मनी डाउचलैंड में जेन और मार्सल भी इस वक्त घर पर है और रेडियो SBS का प्रोग्राम डाउचलैंड में जर्मनी में सुनते हैं। ook een hele mooie dag, Jane en Marcel in Duitsland. Aan Radio SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। उडन शहर में लैला भी हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। लैला, लक्ष्मण, ook een hele mooie zonnige dag. धूप तो खूब निकला हुआ है, गर्मी सा मौसम होने वाले हैं। और खासतौर पर राजन गेड़धारी भी प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और वो भी उत्तरेख लाइटसराइन गेड़धारी स्ट्रात अपना टाउन में अपना गार्डन में बैठ कर हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं राजन गेड़धारी। और सभी सुनने वालों जहां जहां पर भी आप प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर सुनते ही रहना। DAB प्लस रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में सुनाई देता है। भूलना जब भी आप मोटर कार में सफर करेंगे मेडर नीदरलैंड में या प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में, देन हाग रोटरडाम के आसपास में सुतमेर स्कीडाम या कपेल न्यू कैरक तो जरूर हमारा प्रोग्राम अपना मोटर कार में DAB प्लस रेडियो के जरिए सुनते ही रहना। हॉलैंड देश के बीच में मेडर नीदरलैंड में भी DAB के जरिए आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। न्यूवेन एसस्टाइन लोपिक और खासतौर पर साइस्ट शहर में ड्रीबर्गन गौडा में बौद्ध ग्राफन है और ऐसे बहुत से शहरों है जहां पर हमारा प्रोग्राम जैसे कि किलोमबोरग में भी आप DAB प्लस द्वारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं। फियानन में, न्यूवेन में, हाउटन तो जहां पर भी आप मोटर कार से गाड़ी से सफर करेंगे तो अपना DAB प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में आप सुन सकते हैं। उत्तराखंड से आप सफर करेंगे देन हाग रोटरडाम शहर की ओर तो पूरा के पूरा रास्ते पर आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं DAB प्लस रेडियो के जरिए। किशोर और लता एक बार फिर से प्रोग्राम में होगा। बड़े दिल वाला फिल्म का नाम, किशोर कुमार एंड लता।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था बड़े दिल वाला। किशोर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज के प्रोग्राम में हम पेश करने वाले हैं, फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता, सॉन्ग बाय लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मेरी तकदीर में क्या है, काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश होगा। 1962 का फिल्म, 1963 का फिल्म है फिल्म हरियाली और रास्ता। और लता जी की आवाज में गाना को सुनना चाहती है एंस्करडेई शहर की रहने वाली, एंस्करडेई शहर की रहने वाली सीता खुनखुन लता जी की आवाज में एक गाना सुनना चाहते हैं, तो चले ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, एंस्करडेई शहर की रहने वाली सीता खुनखुन की मांगी हुई गाना लता जी की आवाज में।

फिल्म हरियाली और रास्ता, उसी फिल्म से ये गाना पेश की गए, बोल मेरे तकदीर में क्या है। सोमभाई लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। और खास तौर पर एंस्कडे शहर की रहने वाली सीता खुनखुन लता जी की आवाज में गाना को सुनना चाहती थी और इसी तरह से ये गाना पेश की गए। आसरों भी थे कि गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 13 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह 10:30 और रेडियो SBS के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश। प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम उपासना, दर्पण को देखा। द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना।

का गीत पेश की गई दमाईटी मुकेश की आवाज में दर्पण को देखा गाना जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है फ्राइडे 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और मुस्कुराता देनहाग दुकान देनहाग शहर के अंदर में जो है आपको यहां पर राखी फनाफ 1 यूरो में आपको दिया जा रहा है फ्राइडे 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है तो मुस्कुराता दुकान देनहाग शहर के अंदर में जो है कार्ल रोज रात नंबर 4 पर वहां पर आपको राखी फनाफ 1 यूरो में आपको दिया जा रहा है तो जरूर आप तशरीफ फरमाइए देनहाग शहर के अंदर में और यहां पर हजारों हजारों राखी में से तलाश कीजिए अपना राखी फनाफ 1 यूरो में आपको दिया जा रहा है मुस्कुराता दुकान के पास देनहाग शहर के अंदर में जो है कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है muskurata.nl पर। उसके साथ भी आपको खबर किया जा रहा है सुनने वालों की फ्राइडाग 21, सैटरडे 22 एंड सोंडाग 23 अगस्त मिलन समर फेस्टिवल होगा देन हाग सुइडेपार्क में फॉर द 42वीं केर हाँ फॉर द 42वीं केर मिलन समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है और आपको मालूम होना चाहिए द एर्स्ट एंड ग्रोट्स्ट मिलन जो हॉलैंडेस के अंदर होता है इस साल होगा 21, 22 en 23 augustus Zuiderpark Den Haag शहर में। Vrijdag 21 augustus live on stage live आ रहा है from Trinidad से आ रहा है अपना full music group के साथ Dilena Dan music group के साथ Raymond Ramnarayan Vrijdag 21 augustus Milan Summer Festival में अपना टिकट आप खरीदिए milansummerfestival.nl उसी वेबसाइट पर अपना टिकट के लिए आप दरियाफ्त कीजिए और जब आप ग्राम फरहूर के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो इसी वेबसाइट पर जरूर आप जाइए milansummerfestival.nl। आज दोपहर 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना बैठक गाना प्रोग्राम जो सालों से रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है एक ही नाम के साथ एक ही रेडियो स्टेशन के जरिए नाम है बैठक गाना हंगामा द एयर्स बैठक गाना हंगामा जो सालों पहले मेर दान एनन फिर तक यार रेडियो SBS की जरिए पेश हुआ। चलिए प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है

की सौर लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों 4 मिनट बाकी है 11। की सौर लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों 4 मिनट बाकी है 11 बजे में।

और लता जी की आवाज में जिगरी डोस फिल्म का नाम गाना जो इस मौसम के साथ बहुत मिलता जुलता है, खूबसूरत सुहाना मौसम है, यार भरी गाना है, फूल है बहारों का, सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड लता। इस गाना के बाद प्रोग्राम में खबरें पेश होगा और खबरें के बाद हमारा आगामी प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। फूल है बहारों का अनहिल मोइन मर इस खूबसूरत सुहाना मौसम में।

में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपकी बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म ऐलान का गीत भी इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में दिल में हलचल रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शिल्पा राव की आवाज में अभी आपने सुना सर मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो एस बी एस की सर ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया जी के आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड का गीत पेश किया जा रहा है।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म दोन दो की ओर एक गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था डोन डू, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई।

गई आवाज में ये गाना पेश की गई है हमें तुमसे प्यार की तना श्रेया जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए कुमार सानू जी की ओर कुमार सानू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नजर फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर अरिजीत सिंह की आवाज में गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में KK एंड सुनिधि चौहान की ओर हम आपको ले चलते हैं।

uit de film No Entry. KK en Sunidhi Chauhan की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में. चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है.

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका जी के आवास में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। आवाज में जिंदगी एक छाव फिल्म का नाम है और उसी फिल्म से ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार सानू।

भी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा अवतार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में आपकी बार ये गाना, फिल्म का नाम यस बॉस।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और एक गाना और प्रोग्राम में होगा। आइडो फिल्म आज का अर्जुन सबीर कुमार एन लता जी की आवाज में गोरी है कलाई। इस गाना के बाद प्रोग्राम में खबरें होगा। खबरें के बाद 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक कुछ लोकल नगमे आप सभी सुनने वालों के लिए पेश किया जाएगी। सबीर कुमार एन लता आज का अर्जुन फिल्म का नाम।

प्रोग्राम में 9 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। देश विदेश में भी काफी सुनने वालों इस वक्त हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। खासतौर पर लैटसंदम शहर का रहने वाला भाई राम, आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है स्टूडियो की ओर।

रहा है पूरा परिवार को और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। यहाँ से ये प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे कुछ लोकल नगमे की ओर तकरीबन 2 बजे तक, तो जरूर आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए इस खूबसूरत सुहाना मौसम में ये गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आओ मैं डार्लिंग गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ लोकल नगमे आज के प्रोग्राम में, आज रविवार की दोपहर का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है तकरीबन 2 बजे तक। तो चले उन दिनों का एक गाना की ओर, डेविड की आवाज में बस पेश किया जा रहा है, जरूर आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई डेविड गे आवाज में। उन दिनों का एक सॉन्ग आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई, आशा उम्मीद है सुनकर और काफी पसंद किया है। चलिए आज के इस लोकल गाने का खास प्रोग्राम में सुंदर पोपो की ओर हम आपको ले चलते हैं। उन दिनों का एक गाना सुंदर पोपो की आवाज में आप सुनते ही रहना।

सुंदर पोपो की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीछ की गए रेडियो SBS के जरिए 5:04 12:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। मौसम आज का गर्मी सा मौसम है, एक्ट वेर फॉर एन लेकर स्काफ है। तो चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर है।

रेडियो SBS की जरिए दविंदर सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आज की खास बैठक गाना प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना। दविंदर सिंह का नया गाना जो इन दिनों रिलीज किया गया है, बैठक गाना प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना ग्लेन रामबाली के जरिए। और आपको मालूम रहे कि बैठक गाना प्रोग्राम में हमेशा आप तार कर सकते हैं, ऐप कर सकते हैं, जब भी आप गाना मांग करना चाहेंगे, बैठक गाना मांग करना चाहेंगे। सागर मलिक प्रोग्राम में होगा,

सुनते ही रहना 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया उस प्रोग्राम में देवेंद्र सिंह का नया गाना पेश किया जाएगी और खास तौर पर रविंदर भोला सिंह का नया गाना भी आप सुनेंगे बैठक गाना प्रोग्राम में जो ग्लेन रामबाली के जरिए पेश किया जाएगी। चलिए प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो वेव्स पे इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में सविता सिंह किंग सेलेक्टर एंड साधना लीला की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

iOS पे इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। Het is inmiddels 7 minuten voor 2, 7 minuten baki hai, dupair 2 bajar mein Radio SBS ka program aap sun rahe hai, jahan par bahut se sunne walo bas program sunte hai Radio SBS ka, aur sabhi ko welcome kaha ja raha hai, aur program zarur sunte hi rehna. Ek aakhri local geet, local gana, आपके लिए पेश किया जा रहा है और इस गाना के बाद प्रोग्राम में खबरें पेश होगा, जरूर आप सुनते ही रहना।

सुन वालो, 2:00 प्रोग्राम में 1 मिनट बैठी हो चुका है। इसी गाने के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए, और इस गाने के बाद ग्लेन के जरिए बस प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, और 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम पेश किया जाएगी। बैठक गाना प्रोग्राम में सभी को पूरा मौका है स्टूडियो की ओर तार करने के लिए, ऐप द्वारा तार करने के लिए, या तो ऐप के जरिए अपना अपना बैठक गाना मांग करने के लिए, और वो भी 3 बजे से, जबकि बैठक गाना प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। तो हमें इजाजत।

बेस्ट लिसनिंग बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, वो भी शहरी ट्रैक के अंदर से, वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS। किशोर कुमार के आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा की प्रोग्राम से। मैं हूँ आपका खिदमुतगुजार ग्लेन, बस सुनते रहना हमारा प्रोग्राम यहाँ से ओवर रेडियो SBS। James Drake, nummer 237, Sherry Trek in de Zee. Live gezien hier.

और आपकी बार सुनते रहना के तोर मम्मी डैडी, तोर मम्मी डैडी गैले रोमांस करे ना। चटनी चटनी रिवाइवल ओवर रेडियो SBS। वैसे अभी 3 बजे से सुनते रहना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम।

रहे ना रहे, संजय योद्धा के वास में सुनते रहना, और इसी नंबर के बाद सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, फिर के से फमासी, और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो एसबीएस।

3:00 इस वक्त 4 मिनट गुजर रहा है। 4 मिनट 9:03 बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS, और वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना।

नंबर पसंद करना चाहते हो इसी बैठक गाना प्रोग्राम से तो तार कीजिए या व्हाट्सएप के जरिए आप तार कर सकते हो 032-62-66-11। और वैसे फरमाइश इसी हरिया तो मृत्यु समाचार के लिए यानी कि हर एक रेडियो के कामकार के लिए 032-65-66-66 आप तार कीजिए।

0: DAB, DAB Plus के जरिए हॉलैंड के अंदर में और साथ में ऑनलाइन के जरिए दुनिया के हर एक कोने में, कोने कोने में और साथ में हॉलैंड के अंदर में
1: आया है, घर आया है
0: ऑनलाइन के जरिए।

दविंद्र सिंह शिवनाथ के पास में आप सुन रहे प्रोग्राम से हमार मशीनिया न्यू सॉन्ग जो कि रिलीज हुआ ओवर रेडियो SBS।

0: रविंदर भोला सिंह के आवाज में न्यू सॉन्ग जो कि रिलीज हुआ।
1: सब कहे अरे भैया रहा न कोई,
0: गिरधारी श्राद फ्लोइट वायद से
1: बोलिए
0: राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहे।

रविंदर भोला सिंह के वॉइस में न्यू सॉन्ग जो कि रिलीज हुआ से दिल लगाई ले गिरधारी स्रात फ्लोइटन फ्लोइटर वाइड से राजन गिरधारी और बिरमान राजन गिरधारी क्या पसंद तभी आप सुने थे। रशिका दीनदयाल और साथ में हेमलता दीनदयाल के पास में सुनते रहना।

राजू, राजू सिंह गुलाम के आवाज में अभी आप सुन रहे थे कि जूजू से कताब। हरी दत्त जयराम के आवाज में सुन रहे ना आपकी बार।

inmiddels 4 minuten over 4. 4 बजकर इस वक्त 4 मिनट गुजर रहा है. लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS.

0: के तो चिरैया मोर चिरैया, चटनी चटनी रिवाइवल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे ट्रैक से, अच्छा है, अच्छा ही कुमार नंदा का पसंद।
1: मैं तुमसे प्यार किया लेकिन तुमने मुझ नहीं, मेरा दिल बोलती हूँ लेकिन तुमने समझा ही नहीं, समझा ही नहीं।
0: रजीव रजीव हुबा के वास में सुनते रहना।

0: रजीव, रजीव उब्बा साथ में अमितवा के वास में भी आप सुनते हैं बेस्ट लिस्टिंग ब्रॉडकास्टिंग बेस्ट लिस्टिंग रेडियो स्टेशन रेडियो SBS वो भी शरीर तरह के अंदर से।
1: पत्ता टूटे डांर से कि ले गए पवन उड़ाए यारी बिछुड़े यार से।
0: रामदेव, रामदेव चैतू के वास में सुनते रहना।

आशनी माता दीन के आवाज में भी आप सुनते और आपकी बात सुन रही ना आनंद आनंद भजन के आवाज में सैया ले गए के सैया ले गए।

0: विशाल, विशाल हीरा के वास में सुनते रहना।
1: ना बदला कोई मौसम
0: हमार हमार रनिया
1: तेरे।
0: विशाल हीरा के वास में सुनते रहना।
1: सच छिपे ना छिपा
0: लेट्स डाम से राम का पसंद।

कि हमें रात भर सूते न देवे। नवेंद्र सिंह शिवनाथ के पास में सुनते रहना धनहा धनहा से बेयर रमोतार की पसंद सुनते रहना।

दविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में भी आप सुनते के रात भर सूते न देवे तेनाह के रहने वाले भैया भैया रामावतार की पसंद भी आप सुनते हैं।

डेन हाग से हिस्ला यांकी की पसंद भी आप सुन रहे प्रोग्राम से। बिजानवती चाहिए तू के पास में सुनते रहना।

भी जानवती चैतू के पास में भी आप सुन रहे थे। देवेंद्र सिंह शिवनाथ के आवाज में न्यू सॉन्ग जो कि रिलीज हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं।

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल राजीव SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज फिर के से फमासी और उसके बाद में आज आंचल के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आपका खिदमतगार ग्लेन। अब मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिलविल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

देखो दिनिये न ढलने जाए. दिस प्रातः लीजिए इस गजंग दोर आशा भोसले एंक वामा है द फिल्म भावना. द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड इस फॉल्ड लीजिए फिर रेडियो SBS गजंग दोर श्रद्धा कपूर. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी.

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आई द फिल्म जॉगर्स पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Lela met Lela.

तू जहाँ भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एंड इस गजोंग दूर कुनाल गांजावाला। Het volgend liedje via Radio SBS in het programma Gitong Keleher is gezongen door Arijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

पिया तू अब तो आ जा बस आउट द फिल्म कारवां एंड आउट द फिल्म जानम समझा करो कौम सबकी बारात आई डोली तू भी लाना दुल्हन बना के हमको रजा जी ले जाना दिल्ली देश को समुद्र अलका याचनिक

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में. दैट वॉज आउट द फिल्म लुक्का छुपी. ओरिजिनेल इज आउट द फिल्म अफलातून. In het programma Gitong Kelleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lakta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी is uit de film खूबसूरत. Uit de film Kabir Singh komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Mithun en Ajit Singh komt. तुझे कितना चाहने लगे हम.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।